नाथ से यीशु क्रिस्त बागी सही है उपर सही है सब दिरा सही है कि ना तब सही मु उद्यो समय मकरता हूँ सकाई सांत सकाई स्पिरिटु सांतो ang tanan nga dumug kagimaya sa tanan nga mga tuwi sang mga katwiga.